वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आशा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारग पत राजा। रहाओ बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जमके पटाए लिखाया। भगत नार दीरदा न आई काश कूश तंदीना। राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पे।

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुखिया बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिले ओ जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना करस पतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई तितलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, और न पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लहिए। बस्ता गोचर पाई, कट दीपक रे आसमाई। कह

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी। काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ। लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई। तह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर तन लियावै। सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै। अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ। छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा। संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया। कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै। हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ। दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना। अद शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले। खाट मांगो

कह कबीर मन मान्या, मन मान्या कौ हर जान्या। राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब देखा तब गावा, तौ जन धीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ। जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठरी चमकार बीजर तही, ने नाही दूर निजात मैं रया भरपूर। जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहे समानिया। कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी दहो बताई हो। रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ। बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जौ को शान शवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो वापन बेडी आवे हो। ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो। बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू थाप्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो। सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाजै।

तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोरे अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और ना देवा। तुमरे भजन कटै जा फासा, भगत हेत गावे रविदासा। जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कम उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होए गो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, होमर गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो नीर बह तन खीना, पय केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करै परानी। राम राय होहे बैद बनवारी, अपने संतै लिहो बारी रहाओ। माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वा काय औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन, पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कहन ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई। रहाओ रसना रमत, सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जै देखा तै सोई। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना, कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नमा, सदा सदा दातार रहाओ। अंदिन साहेब सेविया, अंत छिडाए सोए, सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा, सदकुरबान जाओ रहाओ, सरबंग साचा एक है, दूजा नाही कोए। ता की सेवा सो करे, जा को नजर करे, तुद वाज प्यारे केव रहा,

पूरे गुर की साची बाणी, सुख मने अंतर सह समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जल अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौं मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाहीं कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, पिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास।

0: ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे तो ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे
1: तो ताज पहना दे,
0: वर्ष भर मौसम में एक वकील आ दे, जो भटकते हैं नहीं पाते रास्ता कोई, उन्हें एक इशारे से जरा गौर कीजिए, उन्हें एक इशारे से उन्हें
2: तो सुनिए ना।

0: मेरे घुटे हुए अरमानों को एक बरकत दी।
1: कौन है जिसने मुफलिसी मुझसे छिना कर मुझे आबाद किया।